तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहिले। रखो रखन हर दयाला, नानक करके गुले। सतनाम वाहे गुरु साहिब जीओ, भाना मलन जानिए, काबल रेख राओ गुर भाई। माधो सोडी कश्मीर, गुरसिखी दी चाल चलाई। भाई पीवा सीर हरंद, रूप चंद सन मुख सत भाई। प्रताप सिख सूरमा,

के सर्वं कलिंग है, के सर्वं दलिंग है, के सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र धन्य है, के सर्वत्र गौण है, के सर्वत्र पौण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र साज है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो,

कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्रता, किल बिख सकल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता। श्री अस्तुज जब पै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्यापत कोई।

साहिब दियार कृपा करता साई कर करे सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुकुम बनाई सी हुकुम बने प्रभा खसमे का मल पाई सी खसमे पा सो करे।

जन्म जन्म के केल बेख दुख उतरे गुरु नाम दियो रिन लाथा मेरे मन पाज राम नाम सब अर्था गुरपुरै हर नाम दृढ़ाया बिन नावै जीवन बिरथा।

तिन साधु चरण ना सेवे कब हूँ, तिन सब जन्म अकथा, जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफलयो जन्म सनाथा।

हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल हैं मार्ग पंथा। हम अंधले को गोरे अंचल दीजै जन नानक चल हैं मिलंथा। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल है मार्ग पंथा।

0: खंड पृथ्वी प्रे चिर जीवे
1: महा उदास तपि सर थीवे
0: अगन में होमत प्राण
1: कलंक अस है वरपूर्ण दान
0: नेवली कर्म करे बवासन
1: जैन मार्ग संजमे अत साधन
0: निमक निम कर शरीर कटावे
1: तापी हमें मैल न जावे
0: हर के नाम संसार कछ नाहे
1: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे
0: मन कामना तीर्थ दे छुट्टे
1: कर मन न मनते हुडे
0: सोच करे दिन सौरा

0: चल जासा।
1: सगल परख में परख प्रधान
0: सास संख्या का मिटे अभिमान।
1: आपस को जो जाने नीचा
0: सो गनिये सबते ऊंचा।
1: जाका मन होए सगल की रीना
0: हर हर नाम दिन कट कट चीना।
1: मन अपने ते बुरा मटाना
0: देखे सगल श्रेष्ठ साजना।
1: सुख दुख जन सम

0: आकाश बाहर सह ले,
1: अज्ञानी मन रोस करे,
0: अपनी प्रतीत आप ही कोवे,
1: बहुत उसका विश्वास न होवे,
0: जिसकी वस्त तिस आगे।

0: जह प्रसाद छत्ती अमृत खाहे
1: तिसा कर को रख मन माहे
0: जह प्रसाद सुगंध तिन लाव है
1: इसको सिमरत परम गत पावे
0: जह प्रसाद बसहे सुख मंदर
1: सह त्याय सदा मन अंदर
0: जह प्रसाद गृह संग सुख बसना
1: आठ पह सिमरोह सरसना
0: जह प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा त्याये त्यावण जोग
0: जह प्रसाद पाठ प्रंबर हंडावे
1: सह त्याग का तवर लुभावे
0: जह प्रसाद सुख सह सोई जे
1: आठ पह ताका जस गावी जे
0: जह प्रसाद तू सब

0: जात
1: सोप्रभ सिमर सदा दिन रात
0: प्रसाद तेरी पत्र है
1: गुर प्रसाद नानक जस कहे
0: जय प्रसाद सुने करनाद
1: जय प्रसाद देखे विस्माद
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना
1: जय प्रसाद सुचै जय वसना
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है
1: जय प्रसाद संपूर्ण फल है
0: जय प्रसाद परम गत पाव है
1: जय प्रसाद सुख सहज समाव है
0: ऐसा प्रभु त्याग वर कत लागो
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो
0: जय प्रसाद तू प्रगट संसार

0: बनाई।
1: साज के संग ना कब होता आवै,
0: साज के संग सदा सुख पावै।
1: साज संग बस्त गोचर लहै,
0: साधु के संग अजर सहै।
1: साज के संग बसे स्थान ऊंचे,
0: साधु के संग महल पहुंचे।
1: साज के संग दृढ़े सब धर्म,
0: साज के संग केवल पार ब्रह्म।

0: साज के संग सुनो हर नाओ
1: साज संग हर के गुण गाओ
0: साज के संग ना मनते विसरे
1: साज संग सर पर निस्तरे

0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो फला
0: ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल आधार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी के एके रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी अहम बद त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता
1: ब्रह्म ज्ञानी के होयो अचिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
1: दस बड़ भागी पाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अथाखर
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त योग जीव का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ

जीवन मुक्त सोऊ कहावे। सदा अनंत नहीं वियोग, तैसा अमृत तैसी विखाटी, तैसा रंग तैसा रजान, नानक ऊपर कहिए जीवन मुक्त, जित जित कर रखे तैसा ध्यानाओ, प्रभावे सोई मन होग, लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग,

0: करे सोई सुखमान,
1: भूला काहे फिरे अजान,
0: कौन वस्त आई तेरे संग,
1: लाख रहो रस लोभी पतंग,
0: राम नाम जप हृदय माहे,
1: नानक परसे ती कर जाहे,
0: जिस पकड़ को लैन तू आया,
1: राम नाम संतन कर पाया,
0: तज अभिमान लेहो मन मूल,
1: राम नाम हृदय में तोल,
0: लाद खेप संत है संग चाल,
1: अवर त्याग भी क्या जंजाल,
0: तन तन कहे सब कोए,
1: उज्जल हर दर कह सोए,
0: बापार बेला बापार,
1: नानक ताके सद बलिहार,
0: चरण साध के तोए तोए पियो,
1: अर्प साध को अपना जियो,
0: साध की तूर करो स्नान,
1: साध ऊपर जाइए कुर्बान,
0: साध सेवा बड़ भागी पाइये,
1: साध संग हर कीर्तन गाइये,
0: मनक बिगन ते साधु राखे,
1: हर गुण गाए अमृत रस चाखे,
0: कोट गही संत है दरियाया,
1: सर्व सुख नानक तह पाया,
0: मृतक क्यों जीवालन हार,
1: भूखे को देवते आहार,
0: सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे,
1: पूर्व लिखे का लहना पाए,
0: सब कुछ तिसका हो करने योग,
1: इसमें दूसर हुआ न होग,
0: जप जन सदा सदा दिन रहनी,
1: सब ते ऊच निर्मल हे करनी,
0: कर कृपा जिस क्यों नाम दिया,
1: नानक सो जन निर्मल थिया,
0: जाके मन गुर की प्रतीत,
1: जिस जन आवे हर प्रचीत,
0: भक्त भक्त सुनिए तै लोए,
1: जाके हृदय को होए,
0: सच करनी सच ता की रहत,
1: सच हृदय सतमुख कहत,
0: साची दृष्ट साचा आका

0: रंग राचन रहे
1: गुर के बचन पदार्थ लहे
0: विदाते दुख काटन हार
1: जा के संग करे संसार।

0: जप नानक प्रभु अलख बड़ाणी
1: बार बार प्रभु जपिए
0: अमृत मन तंत्र पिए
1: नाम रतन जिन गुरमुख पाया
0: इसके शबर नहीं दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मन तन नामे नाम समाने

तब बंद मुहूर्त को किसको गनी, तब नरक स्वर्ग को कौन अवतार, तब शिव सकत कहो कित ठाए, तब कवन निडर कवन कत डरे, नानक ठाकुर अगमा पार, तह जन्म मरण को कहा विनाशन, तब जंगी त्रास कहो किस होए, तब चित्र गुप्त के